पितर जाता जाए माड़ा जा तंबाकू सेवन दे नाल कहने देवते ते पितर सब छड़ जांदे ने पानी ताक है हाथ का मदरा सम हो जाए। वह बंदा तंबाकू पीण वाले दे हत्थों पानी लैके पीना भी शराब दे बराबर मन्या जांदा है। कल नूं बाकी दा श्रवण करांगे। आओ इन्ना कु पाप तां लाईए संसार दे अंदर पता नहीं कित्थे थां थां बीड़ियां सिगटां डिग्गियां। इस करके ताइयों तो नगर कीर्तन दे अगे अगे झाड़ू लाउणा जल छिड़कना इसे करके शुरू होया कि बीड़ियां सिगटां पंजां प्यारिआं दे फिर चरण लगते हैं संगत गंदे थां तो थोड़ी लंघेगी। इस करके सारिआं थावां ते ध्यान दे नाल रहा करो।

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कहके संदेश जो।
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरती है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरती तो बहुत असीं किवें कह सकदे आं? तुहाडा तो जस पहला ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरती लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लैके मेरा, तो इहनू तुसीं माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राख्यो नित मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा।
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: सुन सुन कर सुजस बडेरा।
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन केने छंद बंद सुंदर गत लीने।
0: ए करण परब एदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा, महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्शिश सी ना महिमा वो प्राप्त की है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी दी सोहनी चाल इन लिखी। कवरेश ने जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि, यह कवरेश ने द्रोण पुरब जिहड़ा है ना यह भाषा करके सुनाया। ते हंस राम जिहड़ा कवि दी पठानका तो पता लगता है कि हंस राम दा अगे नाम आवेगा। इन्होंने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने से, अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां दिन करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व। इन्हें तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भाई वीर सिंह जी कहिंदे पिया है यह करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्हां कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखदा कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीस तव मोको 60,000। यह करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नू 60,000, किसी नू 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नू बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत रहन टेर खावे चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जेड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच एक किंतु आम लोगों में भावें आ जाए, पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज नूं, जां सतगुरु सीधा लिख देन। इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने उह तां कवि तों लिखवाया, जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है, इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। ये आपां थोड़ा जिहा अगे चल लईए, ये प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आवेगा महाराज के पास, जिहड़ा ये दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज किथे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है, जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है, उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। यह नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा यह कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, यह तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पा दिंदे आपां हुण, शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी वी पहलां वी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप लिखिया, यह तां गुरु अर्जन देव जी ने नहीं लिखिया हैगा। इउं लोकां जिवें मर्जी शंका खड़ी कर दिओ, दसवें पातशाह कोई भी चीज नूं बोलदे तां आप ही रहे ने भई इहनूं ऐं लिखणा, इहनूं ऐं लिखणा है। उहनां कवियां नूं वडियाई दे दित्ती, चंगा भाई इह तूं लिख। इस तरह सतगुरु महाराज ने बहुत सारियां जिहड़ियां चीजां ने ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਇਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿੱਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ کول بیٹھ گیا کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تھوڑی جی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانو کوئی پوچھدا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہر ایک نو

0: आम तौर पर जब रोटी खाइए देखो जो ग्रहण करके देख लो थोड़े दिन गल दो महीने तीन महीने प्रैक्टिकल कर लो रोटी खा के एक जपजी साहब का पाठ जरूर कर लिया करो चाहे वह सवेरे दुपहरे शाम तिने टाइम कर लो। गुरु अमरदास जी वेले रहतनामे जी लिखे पहला सिख बहुत ही बाणी पढ़ने वाले जो होंगे सी जपजी साहब के आनंद साहब रोटी तो पहला पढ़िया करते सवेरे पहला पांच जपजी साहब पांच आनंद साहब सवेरे दोपहर फिर रोटी का टाइम होना पहला जपजी साहब आनंद साहब पढ़ के रोटी खा के फिर एक जपजी साहब फिर आनंद साहब पढ़ते होंगे शाम को फिर है रास रात को फिर क्योंकि उदों सिखां नूं बाणी स्वाद लगती सी प्यार भी बड़ा सी। महाराज कहिंदे जे तुसीं रोटी खा के जपजी साहब का पाठ करोगे ना विश्व विकार नहीं पैदा होंगे ना कोई शरीर के अंदर बीमारी लगेगी इस तरह करके देखना चाहिए है।
1: सुख सो पचै रोज पजावे काल रहत होए दुख मिटावे।
0: महाराज कहने सुख दे नाल रोटी पचेगी रोज हुंदी कोई बीमारी जिहड़ी पिछे कह के आए ने सो जिहड़ियां बाए पित काफनी पैदा हुंदी आधी व्याधी उपाधि पैदा नहीं हुंदी ते काल रहत होए दुख मिटावे भाव लंबी उम्र वाला हो जाता है अरोग हो जाता है मौत उन्हों लैण नहीं आउंदी फिर क्या मौत ने उत्थे की लैण आउणा है। इन्हां चीजां दा आपसी संबंध बहुत है अन्न दा सो अपने शरीर दे स्वासां दा ते मन दा पानी दा खाण पीण दा इह चीजां जाके अगे आ तां सकदियां वेदांत दी कथा जद आवेगी पर महाराज दी मर्जी ते आ कि उह कथा अपने कर्मां च है कि नहीं है सो इस अंग दे नाल क्योंकि सतगुरु महाराज मेहर करन जिवें महाराज नूं भावे पर यह चीज है कि आपां इह गल जरूर देख लैणी कि इत्थे सतगुरां ने कहा क्योंकि रोटी अपने मेदे विच चार घंटे रहिंदी है चार घंटे रोटी रहिंदी ते बाणी नाल नाल पढ़ी जाइए जपजी साहब का पाठ हो जाए वह रोटी उही अमृत रूप हो जाती है जब रोटी खाते हैं टीवी देखते हैं उही रोटी जहर बन जाती है वह विषय विकार पैदा करने की मन के अंदर इस करके थोड़ा जहा इन गलों वाल ध्यान देंदे हुए घट्टो घट जिन्ने संगत विच आउंदे हो वह रोटी खाण लग्या पाठ विच थोड़ा ध्यान दो रोटी खाने टीवी ना देखा करो।
1: दर्द लाभ मैं धर्म मजारा बीच उदासी के सुखकारा।
0: महाराज कहने देखो जपजी साहब का पाठ है मूल मंत्र का पाठ है इहदे विच सहाई किवें हुंदा जपजी साहब कहने दर्द लाभ जे पैसे दे लाभ लई पढ़ना जपजी साहब पैसे का लाभ हुंदा है जे धर्म नूं कमाउणा तां धर्म दे विच लाभ हुंदा है जे विरागवान बिरती करनी है तां उहदे विच सुख दे देण विच आत्मक आनंद विच जपजी साहब का पाठ आनंद बख्शिश करता है।
1: स्त्री ब्याहन सुत उपजंते देश विदेशन को गमनंते।
0: सो ब्याह आदक दे कार्ज कोई छोटी जी गल नहीं है ब्याह एक जिंदगी पूरी का मसला है। भगत धन्ने ने रब नूं की कहा कहिंदे घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। रब्बा ऐसी स्त्री दे जो बाणी पढ़े जो क्योंकि मुख्य रूप में घर नूं चलाउण वाली तो स्त्री हुंदी है जे मां पंज बाणियां पढ़ती है मां सुखमनी साहब पढ़ती है जे माता बच्चे दी गुरद्वारा साहब आउंदी है तां समझो सारा परिवार ही तर गया बच्चे उस पासे नूं चल पैंदे ने परिवार ठीक है। इस करके सतगुरु कहिंदे ये कोई हासे मखौल की गल नहीं साडी माता साहिब कौर साडे सिर ते है तां असीं भी चंगे बच्चे हां उहनां दे बनण की कोशिश भी करदे हां। इस करके महाराज कहने ब्याह शादी लई भी जपजी साहब दे पाठ करो भाई और जे इस विच मंगो भी कि महाराज चंगे संजोग मिलन जिथे सिख गुरसिख परिवार मिले सुत उपजंते जिहड़ा है पुत्र दे पैदा होण लई पुत्र वास्ते पाठ करे देश विदेश नूं जाणा होवे कुछ देश विदेश जाण दा अड़िका पै जांदा होवे ते जपजी साहब दे पाठ करो ज्यादा करो जिन्ना कु वड्डा कम है जिथे सौ पाठां नाल गल बन सौ कर लो पांच हजार पाठ करना पांच हजार कर लो। महाराज कहने जिन्ना तुसी ज्यादा बाणी पढ़ी जाओगे उन्नी ही कृपा होंगी जाएगी।
1: युद्ध चढ़न ने शस्त्र प्रहारन हुन अरुडन बाजी बारन।
0: युद्ध विच चढ़ना जंग विच जाना तां भी जपजी साहब दी कृपा हुंदी है सो इसे प्रकार शस्त्र चलाउणा शस्त्र दा वार नहीं।

0: दोहेरा ए जप गुर अर्जन साबिद गुरु नानक मुख मंत लिखियो सकर गुर राज सतगुर सन मुख सुख संत
1: संतन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध सिंह जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जपजी साहब की पावन पवित्र महिमा अकली अकली पौड़ी के राही बख्शिश करके अखीर ते संपूर्ण जपजी साहब के किसी भी कार्ज लई दस पाठ या भी पाठ पाठ करे महाराज कहने सारे कार्ज उसके भाई रास होंगे हैं। आओ अगे होर महिमा उच्चारण कर रहे हैं प्यार सत्कार श्रवण करते हाँ रसना करिए पवित्र गज की आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: दोहेरा ए जप गुर अर्जन साबिद गुरु नानक मुख मंत।
1: ये जड़ा जपजी साहब का पाठ है गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के मुखों उच्चारण किया होया मंत्र है ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने इस मंत्र की विधि जिहड़ी है वो सही ढंग नाल समझा के ये बख्शिश की है। ये बख्शिशां गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु अमरदास जी तो प्राप्त कीतियां सन। सो जदों गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी ने जपजी साहब की बख्शिश की उन्होंने लिखिया होया पाठ अपने कोल रखिया संभाल के फिर गुरु अमरदास जी पास ये पाठ होया। उन्हां तो बाद फिर गुरु रामदास जी ने अगे तो अगे इस पाठ नूं उतारा करके एक सोहनी पोथी तैयार की। वो जो पोथियां दे विचों उतारा कीता होया

साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। चल रही लड़ी वार कथा श्री जपजी साहब का महात्म, मूल मंत्र का महात्म श्रवण किया है। सतगुरु महाराज की बख्शिश का सदका समुचे जपजी साहब पढ़न का हुक्म महाराज का है। पौड़ियों विच कला कला फल दर्शाया है, पर समुचा फल मिलता है बाणी पढ़न दे नाल प्यार नाल। और महाराज ने भजन किया कलयुग के समय विच मंत्र जंतर तंत्र एक बार तो घर घर विच हो जाणगे, पर जेड़ा मेरा असल सिख होवेगा वो इन्हां मंत्रां जंतरां वल नहीं जाएगा, मेरा सिख वाहेगुरू जपेगा। सो इस तरह महाराज जी ने इथों तक प्रसंग बख्शिश किया है। आओ अगे श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल गज के।

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कामां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे दी चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा बई जे

0: कलयुग में, कलयुग में एक नाम आधार आधारण आता। जे तुसी आखो ना कलयुग दे विच कोई आधार हो तां 20 रुपये जां 50-100 करोड़ रुपया आधार। ना ना ना, कोई भैन आसरा नहीं, कोई पुत आसरा नहीं, कोई भरा आसरा नहीं, कोई सज्जन रिश्तेदार दोस्त मित्र कोई आसरा नहीं। कलयुग में एक नाम आधार। बोलो कलयुग में एक नाम आधार। समझ लो कला बोलो नहीं, गुरसिखो तुहाडे चरणा ते मैं मस्तक रख के बेनती करदा। बचन अपनी सुरत दे कागज ते लिखो कि कलयुग विच एक नाम दा ही आसरा है। कलयुग विच एक
1: नाम

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कैरवदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कैरवदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बख्शिश दा सदका आप जी सरबत माई पाई, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन करन लई आप अपने घरां तों आए हो, वडभागे हो। सतगुरु ने एक था बाणी दे विच ऐसा दर्ज कीता है, बाहां पकड़ जिस मार्ग पावो, ओ जीव सतगुरु गरीब नवाज तेरी पावन चरण शरण विच पनाह विच आउंदा है। जिन्हों तो जीवन दे नरबा विचों गुजरदिया होया बाहों फड़ के आखे चल गुरुद्वारे चलीए, एवें नहीं। सतगुरु दी पावन गुरबाणी विच यह दर्ज आ कि जिहदी बाह फड़ के सतगुरु गुरुद्वारे लियावे वह गुरुद्वारे आउंदा है। अज दी इस घड़ी दे विच आप जी अपने आप नूं वडभागे जाणो कि तुहाडे पावन शरीर नूं धन गुरु नानक पातशाह दे दीन दुनिया दे मुबारक हाथ लगे, तुहानूं बाह फड़ के सतगुरु ने अपनी शरण विच लियांदा है। इत्थों हुण जिहड़ियां घड़ियां सतगुरु दी शरण विच आप जी ने गुजारनियां ने, सतगुरु कृपा करे ए 20 मिंट दा समां साडे जीवन दे विच ओह गल समझा जावे जिहड़ी अज दे पावन उपदेश विच गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक इस महीने राही आपां नूं कहणी चाहुंदे ने, उपदेश देना चाहुंदे ने। हे जीव आत्मा, असाढ़ दे महीने विच तू की कमाई करनी, असाढ़ दा महीना किन्ना नूं तपश वाला लगदा है, ते किहड़ियां जीव आत्मा नूं असाढ़ दा महीना सोहणा लगदा है, यह पावन उपदेश सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने अज दे महीने विच बख्शिश कीता है। एक बार सारे मेरे भैण भरा अपने विछड़े होने दे अहसास विच आण के जो मेरे साहब ने मंगला चरण दे विच बेनती कीती है, 12वां माझ महला 5वां विच सतगुरु गरीब नवाज दे ओ पावन बचन तुसी ते मैं सारे एक बार रल के गाईए। बहुता समा अज नहीं आप जी की सेवा कर सकनी, सतगुरु कृपा करे कल तो पूरा समा जिन्ना बख्शिश होगा आप जी दे जोड़े झाड़िया करूंगा। एक बार रंग विच आण

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आं, उस तरह श्राध करवाउने आं, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुर नानक प्रगटिया सत

कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब तो वड्डा दुख किन्नू आख्या गुरमुख प्यारे अपनी सुरत नूं जका के गुरु की शरण विच बैठिया करो। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जम्मण मरना वड्डा विछोड़ा, जम्मण मरना वड्डा विछोड़ा, सब तो वड्डा विछोड़ा, सब तो वड्डा दुख गुरबाणी दे विच सब तो वड्डी सजा दसी आ जम्मणा ते मरना। ये जम्मण ते मरण दा दुख जिहड़ा कितों भी नहीं मिटदा। भट्ट कहिंदा है जे कदी गुरु दे दीदार हो जाण जीव आत्मा नूं दर्शन परसे आ गुरु के जन्म मरण दुख जाए, जम्मण मरण दा दुख दूर हो जांदा है। ते आप जी उस सतगुरु पूरे दे दर्शन कीते ने आण के जिहदे दीदार कीतियां तो डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है, एक जन्म दी नहीं, कदी ध्यान दिया करो एक एक बचन वल, जन्म जन्म दी कटी है, जन्म जन्म दी मैल जड़ी लगी है, जन्म जन्म दे वजोगां दे विछोड़े दी मैल जड़ी लगी, सतगुरु दे हजूरी विच आण के सत्ता बलवंड ए बचन कह रहे ने, होवै सिवत खसम दी नूर अरशो कुरशो झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। उस गुरु वाल नेत्र चुको, सतगुरु गरीब पातशाह दे चरणां नाल जुड़ के एक रास होके पढ़िए गुरपुर।

नहीं, मगर वेखण वाली तेरी अख नहीं। आख्या फिर बोलिया पाउण दी जुगती दस। कहिंदा रब दा की पाउणा है, रब दा कितना एवें वड्डी गल आखी, रब मिलदा नहीं, रब मिलदा नहीं। गल ते एक वेच ही सारी गल मुकदी आ, एक गल वेच ही गल मुक जांदी आ। बोलिया रब दा की पाउणा है, इधरों पुटना लाउंदा कोई, इधरों पुटदा कोई, एवें पखंड ना करिए। गल एक वेती फैसला है कि ए रस छोड़, ओ रस आवा। आ दुनिया दे रस छड़ांगे ते ओ रस आऊगा, ओ रस पिया फिर ए रस नहीं पावा। जिदन ओ पी लिया फिर गलासियां चंगियां नहीं लगनगियां, फिर ए दुनिया दे रस चंगे नहीं लगनगे। उदन ते गुरमुख प्यारे हो फिर ओह ही रस चंगा लगना है। बाबा जी कहिंदे वसी रब हिआलिए, वह ते तेरे हिरदे विच वसदा है। बाबा कबीर जी ने एक बचन होर बड़ा सुंदर किया है, प्यार नाल आखो सतनाम श्री प्रमाण ते बेअंत ने। इस शब्द दे उत्ते सारा गुरु ग्रंथ साहब इस गल दे उत्ते प्रमाण मोहरा लाऊगा। मगर बाबा कबीर जी एक बड़ा प्यारा बचन कहते, कहते अल्लाह एक मसीत बस्त है, अल्लो एक मुसलमान की कहते ने किथे रहिंदा है, मक्के मदीने मसीत विच रहिंदा है। ते बाबा कबीर कहिंदा कमाल दी गल आ, अल्लो एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क के सकेरा। जो एक मसीत विच ही वड़ के बंद होके बैठा वा ते फिर दूसरे लोगों नू रोजी कौन देन जांदा है। आखो सतनाम श्री। किते गुरु गोबिंद सिंह साहब नू पुछो नमो सर्व गौणे गौणे गौणे, गौण करना सारिया के घर जांदा है। नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भौणे, नमो सर्व देसे, नमो सर्व सारिया देसा विच सारिया भेसा विच रब ही तुरिया फिरदा। तेरे को आखे मसीह च रहिंदा है, अल्लो एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। ये मुसलमाना नू कह के हुण हिंदू दी गल करदा है, कहिंदे हिंदू मूरत नाम निवासी। हिंदू कहिंदा है कि मूर्ति च बैठा है, मगर बाबा कबीर क्रांतिकारी भगत होया है, कहिंदा दो मैं तत ना हेरा, मेनू दोवां विचों तत नहीं लभिया। फिर आख्या फिर तुसीं कित्थों, कहिंदे अल्लाह राम जीवो तेरी नाई, तू कर मेहरमत साई, दखण देश हरी का वासा, पच्छम अलो मकामा, दिल में खोज दिले में खोजो एही ठौर मकामा। ओ दुनिया दे लोको अपने दिल चो रब लभो, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परे शानी माए। क्यों परेशानियां विच पिया वा, रब नू कित्थों लभदा फिरदा है। काहे रे वन खोजन जाई, जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े। एक बार तीसरे बापू नू पुछ लो, एक बार आखो सतनाम श्री, तीसरे नू दसो तुसी दसो रब बारे। कहिंदे सब किछ घर मैं, बोलो सब किछ बाहर नाई। आ सुन लिया हुण, एवें मास्टर नू फोन करदे फिरदे हो, एवें होर ना पिछिया पासे फोन करदे फिरदे हो। सब किछ घर मैं बाहर नाई, बाहर टोले सो भरम पलाई। जेड़ा बाहरों लभदा उते भरम विच पिया वा। बाबा जी भी यह बचन करते ने, जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हे अलिए, जंगल क्या ढूंढे, की जंगलों विचों लभदा फिरदा है। रब ते तेरे घर रहिंदा है, रब ते तेरे कोल रहिंदा है। आ वेख तेरे अंदर बोलता रब ही रहा है, सबे घट राम बोले। फिर बोलो सबे घट रबा बोले, राम बिना को घट घट मैं बौंड रहिंदा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह पुछ लो जी हर शरीर विच कौन रहिंदा है, ते कहिंदे घट घट मैं हर जू वसे। कमाल दी गल आ, गुरु का सिख होके भी रब नू लभण तुरे, इहदे नाल दी वध नसीबी वाली गल कोई नहीं। एक थां ते आ नाम लैण तुर पैंदे आपां थां थां तों। मेरे साहब नू मेरे बचन अज अमृत वेले चल रहा सी, मेरे साहब दा जदों जपजी साहब पढ़ रहे सन ते बचन आ गया, जेता कीता तेता नाउ, जिन्ना कुछ कीता है की आ, नाम ही है, विण नाम है ना ही को थाओ। ते गुरमुखा प्यारा जिथे मर्जी बह जा ते जपन लग पो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ते जे उथे नाम ना हुंदा ते तू जप कितना सकदो, ध्यान दियो। जे उथे नाम ना हुंदा, जिथे पानी ना होवे उथों पानी पी सकीदा, जिथे पानी ना होवे तुसी करियो पानी पानी पानी पानी मिलजू, जिथे रोटी ना होवे उथे करियो रोटी रोटी रोटी मिलजू,

0: डुबदा पत्थर लीजै। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: गुरमुखो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: प्यारियो सत संगी जनो, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपार बख्शिश नदरे अनायत दा सदका आप जी अज हफ्तावारी दीवान दे विच गरीब नवाज बापू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दर्शन करन लई घरां घरां तों बड़े प्रेम ते उत्साह दे नाल गड्डियां लै के गुरु दर नूं दौड़े हो। ए प्यास सिख दे मन विच सतगुरु कृपा करे होर तत्पर होवे। जड़ी हफ्तावारी दीवान दी प्यास है ए रोज दी बन जाए। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे। गुरु दे सिख ने सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दे रोज दर्शन करने ने दर्शन परसी है गुरु कहे जन्म मरण दुख जाए। मन विच विचार आ रही सी कि इस धरती नूं आपां अक्सर ए गल कहने कि ए निर्दयी धरती, मगर वेखण विच इस तरह आया है कि इस धरती दे उते सिखां दे मन विच गुरु दी प्रीति ज्यादा है। आपां अक्सर कहने आ जिन्ना इंसान नेड़े हुंदा है ओना ही दूर हुंदा है, जिन्ना दूर हुंदा है ओना ही नेड़े हुंदा है। ऐतवार आप जी नूं गड्डियां लैके गुरु घर वल नूं दौड़दियां मन विच इह ख्याल आउंदा है कि इंडिया विच वी ऐतवार आउंदा है, मगर बहुत घट रूहां 100 दे विचों 25% रूहां जिहड़ियां श्री हरिमंदर दे दर्शन करन जांदियां, श्री अकाल तख्त साहब दे दर्शन दीदार आनंदपुर साहब दे दर्शन दीदार करन गुरु घर विच जांदियां, 75% लोग केवल सवेरे उठदे ने, सिर नहाउंदे ने, इशनान करदे ने, कहिंदे अज हफ्तावारी छुट्टी दा दिन है छुट्टी मनाओ। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह बाणी दे विच कहिंदे आ दित करे भगत आरंभ। ऐतवार तां भगती आरंभ करनी चाहीदी क्योंकि छुट्टी दा दिन है, सारा दिन वेले गुरु दे कोल जाओ। जिहड़ी सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने पूरने पाए ने विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसण पाई है। दरगाह दे विच जगह ही तां मिलदी आ जे जीव सेवा ते सिमरन दे नाल जुड़ जावे। इह बाणी दे फैसले मेरे नहीं, जे जीव सेवा करे। ऐतवार वाले दिन इहदे मन विच चाह होवे अगे ते मैनूं कम कार विचों समां नहीं मिलदा ते मैं जाके कम कार दे विचों कोई समा कढ़ के जांदा जांदा जाना वा, दर्शन करके काम ते चलिया जाना, अज छुट्टी है। अज मैं अपनी जिंदगी दे विचों कुछ समा गुरु नानक पातशाह दे प्यारियां दे जोड़े झाड़ने ने, अज मैं कुछ समा अपनी दुनिया दे विचों समा कढ़ के जदों गुरु नानक दी संगत लंगर छकूगी मैं जूठे बर्तन साफ करने ने, अज मैं रोटियां पकाउणियां, अज मैं जल छकाउणा संगतां नूं। मन विच भावना ऐतवार वाले दिन ए परपक बन जाए कि ऐतवार बहुता समा मैं अपने सतगुरु दे दीवार उत्ते गुजारना है, सतसंगत विच गुजारना है। तुहाडे उत्ते सतगुरु गरीब नवाज तुठे ने बाणी दे विच, एक तां सतगुरु जी ने इतना लिखिया बहां पकड़ जिस मार्ग पावो, बोलो बहां पकड़ जिस मार्ग पावो, चरण चलो मार्ग गोबिंद। एड़ा गोबिंदा मार्ग आ गुरुद्वारे आउणा जीव आत्मा ने इथों जीवन दी सोझी प्राप्त करनी। सतगुरु कहिंदे जिन्हों तू बांह फड़ के आप इस रस्ते दे उत्ते पाउणा है ओह जीव आत्मा तेरे दरबार विच आउंदी, तेरी पनाह दे विच आउंदी, तेरी शरण विच आउंदी। तुसी सोचो हुण जिदन संगरांद वाले दिन दासरे ने आप जी दे आण के जोड़े झाड़े सी उदन भी बेनती कीती सी कि मन विच सोचो कि सतगुरु कहिंदे ने जिहदी तू बांह फड़ के गुरुद्वारे दे राह ते पावे ओह आउंदा है, ते जे तुसी हुण गुरुद्वारे आयो गुरमुख प्यारे ते इथों ए सिद्ध हुंदा है कि सतगुरु गुरु नानक ने अज बच्चियां तों लैके बजुर्गां तक जिन्ने गुरु नानक दी संगत आए आ साडी सारियां नूं दी बांह फड़ी, बांह फड के रस्ते उत्ते पा के ए फुरना बनाया चल गुरुद्वारे चलीए। सतगुरु फरमाया कारी ए करे हो गुरुद्वारे होए के साहिब संभाले हो, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਜਲ ਵਰਤਾਉਣਾ ਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਏ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਗਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਵਿਚੋਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਆਪ ਕਦੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜੇ, ਆਪ ਕਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਨੂੰ, ਆਪ ਕਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ, ਆਪ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਤਿਹ ਨਿੰਦੇ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ, ਛੋੜ ਕੁਚਰਚਾ ਆਣ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂੰ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕੇਵਲ ਕੁਚਰਚਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਟਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਜੋ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए
0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावा पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावा वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना, ध्यान दियो तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वह तोतिया दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती तोतिया पोस्त नहीं खाना, ते सारे ही तोते उड़दे उड़दे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए, ते सारिया ने चुन्या भरिया पोस्त खाई जांदे ने, ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी ओ आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है, नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते जाणिया ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह दा नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्ना विच इह छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ, घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चियां नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तो मुबारक वचन सरवण करिए जी।

0: सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास सतगुर पास
0: जी पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास पूरे सतगुर पास
0: ओए नमाणी।

0: ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सहज समावन संग। अगे सुनियो जन के चरण वसे मेरे हीरे संग पनीता देही जन की तूर देओ किरपा निध। आप बोलो जन की
1: तूर देओ किरपा निध।
0: सारे बोलो जन की
1: तूर देओ किरपा निध।
0: जेड़े तेरे सेवक ने उन्हां दी जन की

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आणके, गुरु सत्कार विच आणके, आप जी सरबत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जिन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश हो के आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणजक।

0: वाहे गुरु
1: जुड़ो
0: वाहे गुरु
1: पाहिरे राम कहो किड़ा प्यारा बचन। कई बार आप सोचते जी सानू गुरबाणी पढ़ते हैं समझ नहीं आउंदी, किन्नी मिठी बोली विच धन गुरु नानक पातशाह दा यह पावन बचन। भाई रे बोलो, हां भाई रे, समझ आ गई हे मेरे भरावा। मन नू भरा बना के भुले भटके मन नू आवाज मारो, भाई रे राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो, मगर एक चेते रखी राम कहो चेत लाए। ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए, एदा ख्याल रखी। ए पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिरखिर हासता, एदे पैर है नहीं हो मगर ए दड़ंगे बड़े मारदा ही। मन दी गल की, पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिरखिर हासता, ए बिना मतलब तो ही अपद्र बना, गुरुद्वारे बैठा भी भज्या फिरदा ही। इनु जोड़ के भाई रे राम कहो चित लाए, हरि दे नाम दा परमेश्वर दे नाम दा लाह खट चित जोड़ के। आख्या जी की करा, कहिंदे हर जस वखर लै चलो, वखर मने सौदा। आखो सतनाम श्री, व्यापार करके ना हरि दे नाम दा। उस दर नू जदो तू मुड़े तुसी स्टोर जांदे ही हो, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं कल गुरमुख प्यारियां दे नाल स्टोर गया सा, उत्थे जेड़े स्टोर विच समान खरीदन वाले नाल ट्राली लई ते नाल एक लिस्ट बनाई सी, उन्हां जेड़ी जेड़ी चीज चुकदे सी उत्ते कांटा मारी जांदे सी भी आ चीज लैण आए ए लै ली। तुसी वी व्यापारी बन के इस संसार विच आए हो, कोई लिस्ट बनाई जे की लैण आए जे। अंदर जुड़ के आखो सतनाम श्री, के भुले भटके सुते ही फिरदे आ। कोई लिस्ट बनाई जे के असी इस स्टोर विच जिथे आए ते हटड़े बाजार सौदा करन वणजारे। इथे आपां तीन हटड़े बाजार दे विच तरत पताल आकाश दे विच जिथे जन्म लिया है, इथे आपां कोई सौदा लैण आए आ, आपां भी कोई व्यापार करना है। कोई लिस्ट कढो अपने आप नूं जां गुरु साहिब नूं पुछ लो, सतगुरु मैं की लैण आया है। ते इहो ही ते चेता करा रहे ने, हर जस वखर लो चलो, हर

0: गए गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल
1: गुरमुख लाल गए
0: चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: देख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालिया चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया चिट्ठियां लिख ते उना दे विच दोखी ते लिखे ने उना दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानू आ बेनती करदी हां मैं तुहानू आ बेनती करदी हां जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़ियो कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईयां फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां वी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पंज क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़दी नीले नू कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़दी आ एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नू उत्ते भाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फल पांच साल दी बच्ची कह रही मैं तेरी लगाम फल लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नू लैके जाऊंगी ते जदों घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां नी मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेमुख हुंदा जांदा ही मेरा कहण दा मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: सहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखा दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछियू इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रहे विछोड़े दे विच सड़ रहे तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक एहो जिहा शब्द है जिहदा ना लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह है बिरहा तू ते पातशाह है केड़ी गल्लो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे पेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखा ओ रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

0: करो कृपा।
1: विण सेर सेव करी जय, विण सेर सेव करी जय, विण सेर
0: पक्के गुरु दिया प्रेमणा ने, जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ, जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलन दा चा मन विच पैदा होया, वह सौदा कर दिया ने, कहिंदियां सिर दवांगियां, सिर सिर दा मूढ़ा बना के तेन उत्ते पावांगियां, एक बार मैनू प्यारे दा राह दस। अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले, मैं आ जूटा सैटी जिथे गया सां, गुरमुख प्यारे भी गए सी, भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे, एक सज्जन मिलिया मैनू, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे, पूरे गुरु दे दी किना दी, आहा फिर एक बार आखो का दी जी, अधूरे बड़े ने 99, अज अधूरे ने इस दुनिया ते, इस वेले 99 गुरु अधूरे ने, 99 एको ही पूरा है, बाणी गुरु, एदे तो बिना कोई धरती ते गुरु नहीं। उथे कमाल दी गल सुनाई, सह ते मोना सी, ओ कहिंदा जी कथा सुनदा वा, आनंद आया जीवन विच, मैं तुहानू घुमण खाणना किसे दिन, जूटा साल्ट लेक दे लागे लागे बड़े सुंदर पहाड़ ने, बर्फ पैंदी, मैनू कहिंदा मैं तुहानू घुमा के लिआऊं, घुमाण लै गया, ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शो, मैं कोई रोचक गल बना के आप जी दा ध्यान नहीं उहदे विचों कुछ लैणा चाहुंना। पहाड़ी दे उत्ते लै गया, जाके कहण लगा कि कुछ दिनां तों जदों दा कथा सुन लिआ, मेरा मन करदा है कि मैं अमृत छक लां। आप जी नूं खुशी दी गल दसां, 27 तरीक नूं उथे अमृत दा बाटा तैयार करना है, सारा शहर ही अमृत छकण लई तैयार हो गया, जिन्नियां 60 फैमिलियां रहिंदियां ने जूटा सिटी दे विच, 60 दियां 60 फैमिलियां ही अमृत छकण लई तैयार, सारियां ने नाल खाता, ऐसी गुरु की कृपा होगी। इनू जदों दास ने बेनती की कि जसरना जे तेन गुरु के बचन प्यारे लगे ने ते फिर तू अमृत छकण लई तैयार हो जा, कहिंदा मैं नाम लिया है, ध्यान दिओ मैं नाम लिया है, मैं नाम कितों लै लिया, पंजां तों बिना ते नाम कोई दे नहीं सकदा, बोलो आखो सतनाम श्री, क्योंकि एक बाणी दे विच बचन लिखिया सतगुर दाता हर नाम का, सतगुर दाता, फिर बोलो सतगुर दाता, गज के एक बार आखो नाम कौन दे सकदा, सतगुर दाता, अमृत दा बाटा भी जे कोई कल्ला बंदा बना के दे दे ते लै लोगे, पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर धर शक पुन लेवे, कल्ला बंदा ते रहत भी दृढ़ करावे ते नहीं लैनी, पुन मिल पंचों रहत जो भाखे ताको दृढ़ कर मन में रखे, जेड़े पंजां दा फैसला है। ते कहन लगा जी मैं नाम लिया है, मैं कित्थों लै लिया नाम, राधा स्वामियां तो, कहिंदा नहीं, मैं निरंकारियां कोलों, कहिंदा नहीं, साडे दुश्मन थोड़े नहीं होना, आप जी नूं तां बेनतियां करदा सुचेत होण दी जरूरत, दुश्मन थोड़े नहीं, आख्या फिर कित्थों लिया, सच्चे सौदे वाले दा लै लिया, नूर महल वालियां दा कोई शब्द शुद्ध चानना वेख लिया, कहिंदा ना इन्हां दा नहीं लिया, मैं क्या फिर तू कित्थों लै लिया, एक बड़ी सत्कार योग संस्था दा नां लैके, कहिंदा जी पुच्चो दी मंडी वालियां कोलों नाम लिया, पुच्चो मंडी, बाबा हरनाम सिंह साहब बड़े जीवन वाले हुए ने, बड़ी करनी वाले, बड़ा सिमरन व्यासी रूह हुई, रब दे चरणां नाल लपटी हुई रूह रही, मैं क्या पुछो मंडी वालियां दा नाम, ते मैं सत्कार नाल सुनिया, देखिया तो नहीं कदी, वो नाम देंदे ने, कहिंदे जी उन्हां दी एक शाखा है मलूका पिंड बठिंडे जिले च, मैं क्या जी उत्थे की है, कहिंदा आओ मैं तुहानू घर जाके विखाउणा, ध्यान देना आखो सतनाम श्री, जितना दा भाई जरनैल सिंह साहब दा शरीर है ना, इतना दी पग, इतना दा कमीज पजामा, करण मरड़ी दाढ़ी, उस बाबे दी नाम उहदा बलविंदर सिंह, कहिंदा मैनूं उहने नाम दिता है, मैं की नाम दिता है दस देंगा, कहिंदा दसदा तो नहीं, वह कहिंदे ने दसना नहीं नाम किसी नूं, मगर तुहाडे नाल भी प्रेम पै गया, मैं दस दूं उहने नाम की दिता, ध्यान दिओ मैं की नाम दिता है, तुसीं हैरान हो जाओगे, इन्हां कालियां भेडां नूं कित्थों फड़ोगे हुण, इन्हां नूं कित्थों फड़ोगे, राधा स्वामी का पता लग गया कि साडे दुश्मन ने सानू तोड़ दे, निरंकारियां का तो पता लग गया, आ जिहड़ियां सिक्खी भेस विच कालियां भेडां इन्हां नूं की करोगे, आखण लगे जी उहने नाम दिता, मैं की नाम दिता है, कहिंदा एक ओंकार सुनियो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद ओम, इना लिख के ना एक ओंकार सतनाम ते नाल जोड़ता ओम, फिर अगे सुनो, बह जा पुत बह जा, इना दे के ਨਾਲ ਓਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀ ਅੰਗ ਕਰੀ ਅੰਗ ਸ਼ੇਵਾਏ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵਾਰਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਓਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਹ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪਿਓ

जन्म सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन में की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चौर हो सकता है होर किसे ते चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन अंदर